0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: अभी मेरे साथ हमारी अगली कंटेस्टेंट है. हेलो.
3: हेलो.
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज फोरम.
2: हैप्पी राखी टू यू फोरम.
3: थैंक यू प्रिसिला, टू यू एज वेल.
2: थैंक यू सो मच. सो क्या तैयारियां चल रही है राखी की?
3: जी सब बढ़िया. मेरी एक छोटी बहन है जिनके साथ हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं. इट्स ऑलवेज फन कि हम यूजुअली भाई बहन के लिए मनाते हैं, बट फॉर मी शी इज माई ब्रदर सिस्टर एंड माई इंस्पिरेशन.
2: What's her name?
3: Her name is Mehak.
2: Mehak, what a beautiful name. Tell me, आप कैसे मनाते हो राखी?
3: मैं usually अपने family के साथ मनाती हूँ with Mehak. हम लोग उसका favorite खाना sweets खाएंगे and you know बाहर जाएंगे.
2: क्या है Mehak का favorite मिठाई?
3: Oh, Mehak रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिल्क केक बहुत पसंद है.
2: So Mehak आपको राखी बांधती है, आप उनको राखी बांधते हो. And have you told her what राखी means? Like राखी का क्या महत्व है?
3: She's blind and mentally challenged. So, उनको इतना समझ में नहीं आता है. पर मेरे लिए तो मेरा होल वर्ल्ड है. तो हम मोस्टली रेडियो, वो आपको सुनती है काफी बार. उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, तो बस उनका फेवरेट प्लेलिस्ट लगाते हैं, हम साथ में खाना खाएंगे और बस.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viraniejewelers.com.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
8: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग. राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
12: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
11: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
13: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
14: एक ही होता है.
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
15: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
4: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
3: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
4: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
12: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
13: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
3: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची.
3: मिर्ची हॉट माइक. लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम.
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

0: अब
1: मिर्ची का
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ में है। हाय,
5: हेलो, हाउ आर यू?
4: आई एम गुड, व्हाट्स योर नेम?
5: माय नेम इज नैशल।
4: हैप्पी राखी टू यू।
5: सेम टू यू।
4: तो क्या तैयारी चल रही है राखी की?
5: आई विल गो टू टेक्सास बिकॉज माय सिस्टर लिव्स इन टेक्सास, सो आई विल गो देयर एंड आई विल सरप्राइज हर।
4: तो ये हर साल आप करते हैं कि इस साल स्पेशल प्लान है?
5: ये स्पेशल प्लान है बिकॉज अभी तक मेरी सिस्टर यहाँ ही रहती थी न्यू जर्सी में, लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली है।
4: वाओ, व्हाट्स हर नेम?
5: ओह, माय सिस्टर नेम इज विश्वा।
4: विश्वा, हर साल बचपन से आप राखी कैसे मनाते हो?
5: बेसिकली वो मेरे घर पे आती है, राखी एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली वो मुझे राखी बांधती है और मैं इसको गिफ्ट देता हूँ। लंच और डिनर डिपेंड्स व्हाट टाइम इज हैपनिंग, तो हम लंच के डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ नया करते हैं, मॉल में घूमते हैं। बट लेकिन इस साल वो टेक्सास मूव होने वाली, इसलिए मैं टेक्सास जाऊंगा, फिर देखते हैं कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।
4: बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां ना बड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू गिफ्ट एनीथिंग।
5: वो तो है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी इजी है, मैं जो देता हूँ वो ले लेती है।
3: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viraniejewelers.com।
6: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WP RB Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, लेकिन हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम नहीं पता होगा तुमको, तो पता करते हैं उन्हीं से. हेलो.
3: हेलो.
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: पूर्णिमा.
2: हाय पूर्णिमा, हाउ आर यू?
3: गुड.
2: ग्रेट. क्या कर रहे हो राखी की तैयारी में?
3: राखी में मैं मेरे भाई के यहाँ जाती हूँ और वहाँ उसके राखी बांधती हूँ. पहले तो मैं उसके कपाल में कंकू का चांदला लगाती हूँ, चोखा लगाती हूँ और राखी बांधती हूँ. और बाद में मैं उसके लिए स्वीट बनाकर ले जाती हूँ. वो स्वीट मैं प्रेम से खिलाती हूँ उसको.
2: तो ये सारी मिठाइयाँ आप अपने हाथों से बनाते हैं?
3: हाँ, एक दो स्वीट मैं हाथे से बनाती हूँ.
2: तो आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं?
3: बड़े हैं.
2: और वो क्या करते हैं आपके लिए?
3: वो मेरे लिए स्वीट लाते हैं और मुझे गिफ्ट, अच्छी गिफ्ट देते हैं. गोल्ड की स्मॉल गोल्ड एयरिंग देते हैं या विटी देते हैं, ऐसा कुछ दे देते हैं.
2: बचपन की कुछ मेमोरीज है आपकी राखी की?
3: या मेरे तीन भाई हैं, हम सब राखी के टाइम पर सब राखी बांधकर हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हमें सब डिनर करते हैं और खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुश खुश साल में.
1: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
4: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islington, New Jersey।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: हमारे साथ अगली पार्टिसिपेंट आ चुकी है लाइन पर. लेट्स फाइंड आउट क्या नाम है उनका. हेलो.
3: हाय, हाउ आर यू.
2: आई एम गुड, हाउ आर यू.
3: आई एम गुड एंड माय नेम इज आचल.
2: हाय आचल.
3: या एक्साइटमेंट है, राखी की तैयारी है. स्पेशल बॉन्ड होता है ब्रदर सिस्टर का, सो जस्ट वेरी एक्साइटेड. ये वीकेंड पूरा सेलिब्रेशन रहेगा 2-3 दिन.
2: सो आपके भाई का नाम क्या है.
3: मेरे भाई का नाम सुमीर है.
2: सुमीर. और आपके साथ में है या वो इंडिया में है.
3: वो यहीं पर हैं, लोकली हैं. सो वी गोना मीट एंड सेलिब्रेट इट टुगेदर.
2: तो कैसे आप मनाते हो हर साल.
3: बस ये एक्साइटमेंट ही रहती है. मिलते हैं साथ में, खाना खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं साथ में. बच्चों को भी, वो लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं. तो इस त्योहार का एक स्पेशल ये होता है कि जो हम लोगों ने पास्ट में मेमोरीज चाइल्डहुड में रखी होती हैं, वो सब रिवाइव हो जाती हैं. तो ये वी जस्ट गो आउट ईट इन द इवनिंग. पहले शाम को घर में राखी का फेस्टिवल करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मंदिर जाके

0: करते हैं उसको.
1: एंड आपको गिफ्ट मिलते होंगे बहुत अमेजिंग.
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे इतना अच्छे अच्छे ज्वेलर्स हैं एडिसन में, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं.
1: Wow.
0: Yeah.
1: That's amazing. And our contest
2: presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go
2: on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
2: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
1: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं. द स्टेज इज सेट,
2: द माइक इज रेडी. आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक. अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर. ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
3: अब मिर्ची खा.
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are...

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Listener mein back to back gana sunega.
4: Back to back gana sunega.
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are-

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट. हेलो.
3: हाय, माय नेम इज संध्या. हाउ आर यू प्रिसिला?
2: हाय संध्या, आई एम गुड. हैप्पी राखी टू यू संध्या.
3: हैप्पी राखी टू यू टू. माय ब्रदर इज नॉट हियर, बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम. दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट. या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम, माय सिस्टर ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम, एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर. लाइक you know, like we used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get like, you know, all those karare karare note. Oh. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
2: Aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
3: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, you know, video call and then we just, you know, just say happy rakhi to them. So yeah, we miss those days. Yeah.
2: Okay. And that's kind of the sad reality of life. कि अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे.
3: एग्जैक्टली. या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशन सो क्विकली यू नो विद सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम.
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट विरानी ज्वेलर्स.com.
4: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
1: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क,
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सेप्टेम्बर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
6: On a ride.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर। हेलो,
2: हाय,
1: व्हाट्स योर नेम?
2: शीतल।
1: हाय शीतल, हाउ आर यू?
2: गुड
1: शीतल, हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: क्या चल रहा है, राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
2: बहुत अच्छे से चल रही है। राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले है मेरे भैया के घर, फ्राइडे को ही। इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले है क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है। तो
1: ग्रेट, कौन कौन होने वाला है, उनके नाम बताइए, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
2: हाँ। मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे हैं, वो भी आने वाले हैं। दूसरी सिस्टर है, उसके भी तीन बच्चे है, तो दो ब्रदर है और बेटे है और एक बेटी है। हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते है और भाई की आरती करते है और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं। और लेकिन मेरा भाई छोटा था है, वो तो बहुत नटखट है।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
5: ऑन अ राइड.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's Hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, we are gonna go, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
1: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क,
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab Mirchi kha.
5: Radio Mirchi. It's hot.
6: Ladies and gentlemen.

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका के साथ. दिस इज योर रिमाइंडर दैट कैलोरीज कंज्यूम्ड व्हाइल डांसिंग डोंट काउंट. साइंटिफिक प्रूफ? नन. वी कैन बिलीव सिस्टम? एब्सोल्युटली.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Tera kya hoga Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
3: Ab Mirchi kha.
5: Radio Mirchi. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
7: On a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क,
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर।
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। रेडियो मिर्ची
2: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Check.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स ऑन 92.7 FM,
5: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आर के जूल्स।
1: मंगल आरती,
0: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
0: सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर।
2: ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, आइए जानते हैं आइडियल स्लीप ड्यूरेशन क्या है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, ऑल इज गुड, हाउ आर यू?
3: बहुत बढ़िया। आप रात को अच्छे से सोई?
4: बहुत अच्छे से।
3: नींद अच्छे से आ जाती है आपको?
4: बहुत अच्छे से आती है।
3: बहुत लोगों को नींद नहीं आती, ये भी एक बीमारी है। सोचिए कि कहते हैं कि एक तिहाई हिस्सा जो हमारी जिंदगी का होता है वो सोने में जाता है, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक स्लीप वो ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं उनको मैंने कई बरसों से देखा है, वो मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे सोते हैं पिछले 20-30 साल से। उनको एक बीमारी है, उस वजह से वो नहीं सो पाते, लेकिन वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं हर इंसान के लिए। सुबह उठ जाएंगे, सारे खिड़कियाँ दरवाजे खोल देंगे, न्यूज़ लगा लेंगे, भक्ति गीत चला देंगे, रात को 11-12 बजे जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो अवेलेबल हमेशा सबके लिए रहते हैं। स्लीप के बारे में बहुत डिस्कशन होता है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं 3-4 घंटे सोता हूँ मैं मात्र, लेकिन फिट लगते हैं। मेरे पिताजी भी टचवुड बहुत फिट हैं, भगवान करे वो ऐसे ही बने रहें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सिंपल सा सवाल है, हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी?
4: ये सिंपल सा सवाल बहुत बार आता है, सब पूछते हैं
3: जी,
4: लेकिन इसका कोई भी डेफिनेट आंसर देना बहुत मुश्किल है।
3: अच्छा,
4: समवेयर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्लीप को हमारी इफेक्ट करते हैं। उसमें पहला फैक्टर तो यही है कि आपका दिन कैसे बीतता है।
3: जी बिल्कुल।
4: किसी का बहुत फिजिकल वर्क होता है
3: जी,
4: किसी का बहुत आराम से बैठ करके काम होता है
3: जी,
4: किसी का फिजिकल वर्क है, फिजिकली वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं,
3: सो
4: दे माइट नीड एन आवर और टू मोर देन द अदर पर्सन।
3: राइट।
4: फिर भी अगर हमें एवरेज कहना होगा
3: जी,
4: सो आई थिंक 6 to 7 hours इज गुड
3: फॉर एन अडल्ट।
4: क्योंकि
3: बच्चों को कहते हैं कि ज्यादा चाहिए होता है,
4: बच्चे ज्यादा सोते हैं, पर एज एन अडल्ट, क्योंकि उसमें भी अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत लोग कहते हैं नींद का वो आवर्स बढ़ता ही जा रहा है। पहले कोई 4-5 घंटा कहता था, फिर 6, 7, 8, 9, अभी 10 घंटे भी कहते हैं
3: जी,
4: तो फिर सोते ही रहेंगे, इट्स लाइक दैट,
3: तो काम कब करेंगे,
4: काम कब करेंगे। मोर देन दैट, क्यों इतने घंटे हम बढ़ा रहे हैं, माना जो स्लीप का पर्पस क्या है। स्लीप आपकी बॉडी जो थकी हुई है उसको भी रेजुवेनेट करता है, साथ साथ माइंड की भी हीलिंग करता है। माइंड बॉडी दोनों की हीलिंग होती है।
3: बिल्कुल।
4: कभी कभी आजकल क्या हो रहा है, शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता है। मन अभी तक अपने ओवर थिंकिंग के मोड पर होता है। 8-10 घंटे सोने के बाद भी किसी किसी को उठ करके लगता है 5 मिनट और, जो 8-10 घंटे में नहीं हुआ
3: वो 5 मिनट में कैसे होगा,
4: वो 5 मिनट में क्या होगा।
3: हाँ।
4: तो एक्चुअली वो 5 मिनट और का कारण ये है कि मन नहीं सोया था, मन अभी भी थका हुआ है, इसीलिए आपको उठने की दिल नहीं करती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कुछ लोग सुबह फ्रेश होकर क्यों नहीं उठ पाते, आइए इसकी पॉसिबल रीजंस को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो ये जो मन थका हुआ है ये बहुत कॉमन चीज है, बिकॉज अक्सर जो इंसान जब सुबह उठता है तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह फ्रेश नहीं उठे हम सुबह, हमको थकावट की अभी भी महसूस हो रही है, या आंखें फूल सूजी हुई हैं, या ऐसा लगता है कि थोड़ा और सो जाएंगे तो कभी कभी हेडेक के साथ भी उठते हैं तो शायद हेडेक चला जाएगा। आप कह रहे हैं कि मन नहीं सोया, अब ये मन को अगर सुलाना हो तो कैसे सुलाएं?
4: कई सारी चीजें, ये एक फैक्टर है, मतलब स्लीप डिप्राइव्ड हम बहुत देखते हैं आजकल लोगों
3: जी
4: को। आप देखें, चाहे हम मॉर्निंग का समय होगा, ट्रैवल कर रहे होंगे, लोकल ट्रेन्स में होंगे मुंबई में, आप फ्लाइट में होंगे, आप कई बार देखते हैं मॉर्निंग है अभी 7 बजे 8 बजे, पीपल हैव स्लेप्ट वेल, बट फिर भी बैठते ही
3: नींद आ जाती है।
4: कहीं पर भी सो सकते हैं, कहीं पर भी बैठे बैठे भी सो जाते हैं
3: जी।
4: तो ये एक साइन है कि स्लीप डिप्राइव्ड है
3: जी।
4: अब स्लीप डिप्राइव्ड दो तरह से हो सकता है, कि एक है कि सच में स्लीप डिप्राइव्ड है, आप उतने घंटे सोए नहीं है, दूसरा क्वालिटी ऑफ स्लीप ठीक नहीं थी। दोनों अलग चीज है,
3: क्वांटिटी और क्वालिटी
4: दोनों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आपकी क्वालिटी स्लीप होने लगती है तो क्वांटिटी अपने आप कम होने लगती है। दैट इज वाई सम पीपल 4-5 आवर्स भी उनके लिए सफिशियंट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्लीप बहुत क्वालिटी होती है। तो कुछ चीजें हैं जो हम रात को कर सकते हैं सोने से पहले, अगर हम कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी भी फॉलो करेंगे, यू विल सी दैट वी विल स्टार्ट स्लीपिंग बेटर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री, सावित्री त्रिपदेक्षरे, अजरे अमरे मातः, त्राहि माम शरणागतम्। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौरमंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: gets hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: अच्छी नींद के क्या फायदे हैं और स्लीप डेप्रिवेशन का हम पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि आपने कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्लीप क्या है. आपने कहा ये बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत जरूरी है. तो मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि ये तो आपने मोटा मोटा बता दिया, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे सब यू नो वर्टिकल्स हैं. जैसे कहते हैं कि भैया गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप अच्छा सोएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आप लंबा जिएंगे, आप फास्ट एज नहीं करेंगे, आप खुश रहेंगे. कई बार नींद की कमी के कारण इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है. हाँ, फिर वो कहते हैं कि इसके साथ डिजीजेस भी लिंक्ड होते हैं. जब आपको सही नींद नहीं मिलती सही मात्रा में और कम से कम 7 घंटे, जैसे आपने कहा 6 से 7 घंटे अगर नहीं मिले, तो इट कैन लीड टू स्ट्रोक, इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी बढ़ने का भी कारण होता है. अभी कह रहे हैं कि 3 तरह के कैंसर वो हैं, बाउल कैंसर, आई थिंक प्रोस्टेट कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के इंक्रीज भी इससे लिंक किया गया है अगर स्लीप की कमी हो. वेट गेन जो है वो भी स्लीप के कारण हो सकता है. ओबेसिटी का कारण माना जाता है कि बच्चों में 89% तक बढ़ने के आसार नजर आते हैं और अडल्ट्स में करीब 50% बढ़ने के नजर आते हैं अगर आपको नींद पूरी नहीं हो रही हो. तो टाइप 2 डायबिटीज इससे बढ़ने का कारण होता है.
5: हम ये सब सुनते हैं, हम कहते हैं क्या कनेक्शन है ओबेसिटी और स्लीप का, क्या कनेक्शन है.
4: बिल्कुल, और ये बहुत, मैं भी जब पढ़ रहा था मैंने कहा अरे तो मेरे मोटापे का कारण ये है कि मैं कम सो रहा हूँ.
5: इट कुड बी वन ऑफ द reasons, क्योंकि जब आप अगर ठीक से नहीं सोए होते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं कर रहे होते हैं.
4: जी.
5: तो आप उन चीजों को क्रेव करना शुरू करते हैं जो आपको इमीडिएटली एक हिट जैसा देता है, आपको फ्रेश फील कराता है.
4: जी.
5: यूजुअली अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो आप खाना भी वो वाला चूज करते हैं जो आपको इमीडिएट
4: सैटिस्फैक्शन
5: देगा या प्लेजर की फीलिंग क्रिएट करेगा या शुगर स्पाइक आपकी बॉडी के अंदर देगा.
4: जी.
5: और फिर एक बार उसकी आदत पड़ जाती है, स्टार्ट क्रेविंग दैट.
4: बिल्कुल.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नींद और गिल्ट का क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं इस इमोशनल कनेक्शन को।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो जब मैंने पढ़ा कि इतनी सारी चीजें हैं जो कम सोने से होती हैं, तो मैंने कहा क्या जरूरत है यार, आराम से सो जाओ। लेकिन आज की जिंदगी में जब मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था, ऑफिस में बात कर रहा था, परिवार में बात कर रहा था, नींद ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। इनफैक्ट इसका उल्टा जरूर होता है, बहुत लोग गिल्टी फील करते हैं अगर वो ज्यादा सो जाएं। ज्यादातर घरों में जो घर का ख्याल रखते हैं, वो चाहे माएं हों, बीवियां हों, बहनें हों एक्सेट्रा, ज्यादातर घरों में, इंडियन घरों में ऐसा देखा गया है, वो अगर आधा घंटा सो जाएं दोपहर में या सुबह लेट उठें या बीमारी भी हो तो बहुत गिल्टी फीलिंग आती है। और एक आध बार मैंने पूछा भी कि क्या हो गया, अगर बीमार हो तो सो जाओ, इसे नहीं तुम उठ गए, पापा उठ गए, या लेट से फूफा जी आ गए घर पे, या ससुराल से कोई आया है, तो हम कैसे सो सकते हैं। तो नींद का गिल्ट से क्या कनेक्शन है, मुझे समझ में नहीं आया।
4: गिल्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, कई बार सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कुछ नहीं है। अगर आप घर को संभाल रहे होते हैं तो उस समय पर आपको लगता है शायद आपको अवेलेबल होना जरूरी है, आप अवेलेबल नहीं होंगे, है तो उनकी शुभ भावना ही पीछे। उनको लगता है कि अगर हम अवेलेबल होंगे तो सब कुछ सिस्टमैटिक होगा, सब कुछ ईजी होगा, क्योंकि उनका एक रोल है और वो रोल प्ले करते हैं तो बहुत चीजें स्मूथ होती हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई भी और कारण है तो फिर घर के मेंबर्स को वो सपोर्ट करना चाहिए। गिल्ट की लेंगे तो है ना, अगर घर वाले कहेंगे कि कोई बात नहीं आज हम खाना बना लेंगे, कोई बात नहीं आज हम देख लेंगे, सो दे कैन ऑल्सो स्लीप प्रॉपरली। पर कई बार ऐसा नहीं होता, समवेयर वहां पर भी होता है, कब उठेंगे, कब आएंगे, ऐसा क्या हुआ, इतनी बड़ी बात क्या, या ये इतना सा करके फिर रेस्ट कर लें, दिन भर में तो रेस्ट ही करना है ना, सुबह थोड़ा सा कर लें। सो इट इज ऑल्सो कल्चरल, इट इज ऑल्सो डिफरेंट होम टू होम, कि वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, वहाँ की अपब्रिंगिंग कैसी है, सो लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट फॉर ईच अदर इज नेसेसरी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नींद और गिल्ट के इस कनेक्शन को कैसे ब्रेक करें? आइए जानते हैं कुछ इजी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे, कई बार हमारे यहाँ रिलेटिव्स जो हैं सुबह सुबह 8 बजे आ जाते थे। संडे के दिन, संडे एकमात्र दिन था जब मम्मी या हम सब थोड़ा आराम करते थे, तो हमको लगता था यार 8 बजे सुबह कौन आता है। और अब धीरे धीरे जो जिंदगी है थोड़ी बदल गई है, तो अब लंच के बाद ही इंसान है, तो हमको लगता था यार 8 बजे सुबह कौन आता है। और अब धीरे धीरे जो जिंदगी है थोड़ी बदल गई है, तो अब लंच के बाद ही इंसान नॉर्मली आता है। और

0: वॉज लिंक टू, मैं आज ज्यादा सो नहीं सकती वरना लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे जो रिलेटिव्स आएंगे वो क्या सोचेंगे. तो मैंने ये देखा है कि हालांकि हम कह रहे हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गिल्ट फीलिंग आ जाती है, चाहे वो खुद में नहीं हो तो सामने वाला डाल देता है कि यार आपके यहाँ तो लेट तक सोते हैं लोग.
1: सामने वाला तो हमारे अंदर कोई फीलिंग डाल नहीं सकता है. ये चीज क्या होता है कि हम जो कई बार बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न उठा करके सामना शिफ्ट करना चाहते हैं.
0: अच्छा,
1: अगर आपके ऐसा घर में है कि कोई जल्दी आ भी जाता है, मॉर्निंग्स में जल्दी आ भी जाता है, आपके पास चॉइस होती है कि आप उस चीज को कैसे करते हैं. आप ये भी सोच सकते हैं, इट इज जस्ट यू नो इट्स द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो आप अपने साथ करते हैं.
0: अच्छा,
1: आप बहुत विक्टिम मोड में भी सारा काम कर सकते हैं.
0: हाँ.
1: और आप बहुत खुशी से भी कर सकते हैं.
0: जी.
1: पहले तो ये देखना होता है कि वो जो मेरा रोल है.
0: हाँ.
1: अगर वो मुझे रोल बजाना ही है.
0: हाँ.
1: मैं उस रोल से छूट नहीं सकता. मे बी आज के दिन संडे के दिन वो मदर है या घर का कोई भी है, वो रोल मुझे प्ले करना ही है. सो नाउ आई कैन डिसाइड कि वो जो रोल मुझे प्ले करना है वो रोते रोते करना है
0: या
1: खुशी से करना है. वो जो मुझे नाश्ता बनाना है वो खुशी से बनाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे ही रिलेटिव्स हैं, वो मेरा ही परिवार है, वो मेरे से ही मिलने आ रहे हैं. हम उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, चाहे तो हम एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो हम इरिटेट भी हो सकते हैं, गिल्ट में भी जा सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, चूज. जब करना ही है ना, बहुत करके क्या होता है, हम बहुत कुछ करते हैं. करते हैं, ऐसा नहीं है करते नहीं है, मजबूरी से करते हैं.
0: बिल्कुल,
1: कर भी लेते हैं लेकिन अंदर में थोड़ा इरिटेट होते रहते हैं. अच्छे से बाहर से लगेगा सब बहुत अच्छे से किया है, पर अंदर में वो खुशी नहीं होती. तो जब आपने चूज कर ही लिया, तो आप पहले अपने को उस स्थिति में लेकर के आए, 2 घंटे की बात है, मेरा ही परिवार आ रहा है, हमसे बहुत प्यार करता है, हमें बहुत खुशी है वो हमारे घर पर आ रहे हैं, लेट मी डू इट विद जॉय एंड यू नो लेट मी एंजॉय दिस. सेकेंडली, आप परिवार वालों को कह सकते हैं
0: कि सुबह सुबह मत आया करो.
1: नहीं, आप उनको नहीं कहिए सुबह सुबह नहीं आया करो, आप अपनी इमीडिएट फैमिली को कह सकते हैं सपोर्ट करने के लिए.
0: हाँ.
1: आप उनको नहीं कह सकते आप नहीं आया करो, वो शायद हर्ट हो जाएंगे.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रिलेशनशिप में सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मुझे एक चीज बताइए, आपने जब ये बात कही तो एक सडनली एक इमेज मेरे दिमाग में आया। मुझे याद है कई बार घर पे झगड़े भी इस बात के होते थे। मेरी माँ मुझे याद है मम्मी पापा को कहती थी कि दोपहर में तुम अपने आप अपने रिलेटिव या बिजनेस पार्टनर्स को मत लाया करो। एक वो सुबह दोपहर में वो आधा घंटा ही तो मिलता मुझे सोने का, उस समय भी आप आ जाते हैं किसी को लेके एक्सेट्रा, तो बहुत बार लड़ाइयाँ होती थी मुझे याद है बचपन में। तो आप कह रहे हैं कि खुशी खुशी करो, बट अगर ये रेगुलरली डिफॉल्ट होता है ना तो आदमी इरिटेट तो होता ही है।
4: अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए ना फैमिली में, अगर वो आधे घंटे के लिए ही रिक्वेस्ट कर रही है। सी दैट इज वेयर द रिलेशनशिप कम्स इनटू प्ले। अगर हम एक दूसरे को समझते हैं तो वही हम आधा घंटा बाद में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर वो वंस इन अ वाइल होगा ना तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे। सी आप कह रहे हैं अगर डिफॉल्ट होगा तो नेचुरल सी बात है कि फिर वो उतना कोऑपरेट नहीं करेंगे, उतना सहयोग नहीं देंगे। मे बी दैट इज हर टाइम, दैट्स हर मी टाइम और रेस्ट टाइम है, वो उतना ही आधा घंटा है। अगर आप उनको भी समझते हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं, उनके टाइम को वैल्यू करते हैं, उनके टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, तो किसी दिन अगर उस टाइम पर कोई आएगा तो वो भी अपने उस रेस्ट टाइम को सैक्रिफाइस करके आपको जरूर सपोर्ट भी करेंगे। कोई बीमार होगा पूरा हेल्प भी करेंगे। दैट्स वेयर रिलेशनशिप इज, व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड मेक दोस लिटिल लिटिल सैक्रिफाइसेस फॉर ईच अदर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: अगर हमें हेल्दी रहना है किन तीन इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
4: बच्चों को लेके घर पे काफी तांडव मचा रहता है कि यार ये सुबह 10-10 बजे तक नहीं उठते, और कई बार बच्चे बोलते हैं हम बहुत पढ़ते हैं रात को, या फिर हम स्कूल का हमको बहुत रहता है. तो ज़्यादातर बोलते हैं कि बच्चों को ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती है. अगर एक एवरेज अडल्ट 6-7 घंटे क्वालिटी स्लीप ले तो बच्चों के लिए बोलते हैं कि 9-10 घंटे उनको ज़रूरत पड़ती है.
5: बच्चे मानो कौन सी एज के,
4: लेट्स से 15 साल तक की उम्र के बच्चे.
5: आई थिंक 15 साल में भी 6-7 आवर्स इज सफिशिएंट. आप देखें, खाना और नींद
4: जी
5: दो चीजें ऐसी हैं, आप जितना बढ़ा दें वो बढ़ते जाएंगे. दोनों के साथ
4: कम करें वो
5: हाँ, मतलब जितना कम तो एक लिमिट तो है, क्योंकि वो दोनों चीजों पर शरीर चलता है, तो उसकी एक आवश्यकता तो है. आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि अगर आप नहीं देंगे खाना स्लीप तो उसका इम्पैक्ट भी होगा. हेल्दी बॉडी को क्या चाहिए, एक्सरसाइज, फूड एंड गुड स्लीप. ये तीन चीजें चाहिए. इफ यू वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी, आपकी डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, वो चाहिए. बट एट द सेम टाइम स्लीप एंड फूड इज समथिंग, अगर आप बढ़ाते जाएंगे ना वो बढ़ता जाएंगे. आप कभी देखना रेगुलर डेज पर हम जितना सोते हैं, संडेज को या वीकेंड्स पर हम तो सोचते हैं थोड़ा ज्यादा सोएंगे.
4: बिल्कुल.
5: हम ज्यादा लेजी किस दिन हो जाते हैं, फिर ज्यादा सोने के बाद भी हम ज्यादा फ्रेश नहीं फील करते हैं. कई बार ज्यादा सोने के बाद भी आपको एक लेथार्जी सी बनी रहती है, एक लेजीनेस सी बनी रहती है. हमें लगता है, हमें ये लगता है कि हम शायद ज्यादा सोएंगे या तो हम बहुत फ्रेश हो जाएंगे. दैट इज नॉट द ट्रूथ. यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लीप, वो तो है, लेकिन यू डोंट नीड मोर देन दैट इवन इफ इट्स अ वीकेंड. उससे ज्यादा वो चीज नहीं चाहिए
4: कि आज मैं 15 घंटे सोऊंगा, ऐसा इसका कोई फायदा होता नहीं है.
5: नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता. वो इनफैक्ट वो चीज आपकी जो बॉडी है वो एक बहुत उसका बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका एक रिदम है. अगर आप उसी के अनुसार उसको चलाते हैं तो वो बेस्ट प्रोडक्टिविटी देती है. जैसे कोई मशीन होती है, हम उस मशीन को समझते हैं, इस मशीन को कितना चलाना है, कितना इसको रेस्ट देना है, ये बेस्ट आउटपुट किस पर देती है. ऐसे ही कितने बजे हम सोते हैं, कितने बजे हम उठते हैं, हम उससे पहले क्या खाते हैं, अगर उसको समझ लेते हैं तो हमारी बॉडी भी बेस्ट आउटपुट देती है. इनफैक्ट जो लोग आप देखते हैं 4-5 घंटा सोते हैं, आप अभी प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, पर वो आउटपुट तो कितना देते हैं. वो ऐसा थोड़ी ना है कि 4 घंटा सो करके वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं या वो मीटिंग्स में नहीं है. देर आर डेज जब वो सो भी कम रहे होते हैं और वो खा भी कम रहे होते हैं, वो फास्ट आदि कर रहे होते हैं या वो सिर्फ वाटर पर होते हैं, तो भी हम देखते हैं कि वो देश विदेश में बहुत अच्छे से बहुत फ्रेश होकर के अपना पार्ट बजा रहे होते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट स्लीप, इट इज ऑल्सो कितना आप मन से कितने फ्रेश हैं.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा, तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Kichi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर रौनक कसत हैं, वो पूछते हैं कि मैं किसी से बहुत गहरे रूप से प्यार करता हूँ, मेरा जो दिल है माई हार्ट स्टिल लव्स हर, मेरा हार्ट अभी भी उसे पकड़ा हुआ है जबकि मेरा जो दिमाग है वो आगे बढ़ना चाहता है। अब मैं लेट गो कैसे करूं इस अटैचमेंट से और इनर पीस कैसे पाऊं?
2: अब जब हम बात करते हैं हार्ट की और दिमाग की, तो हम क्या कर रहे हैं? ये वाला हार्ट तो नहीं है जो,
1: नहीं, ये फिजिकल जो अंदर जो ब्लड पंप कर रहा है उस हार्ट की बात नहीं हो रही,
2: उस बात नहीं चल रही। देखो, हम एक होता है फीलिंग्स, एक होता है वो जो कह रहे दिमाग इंटेलेक्ट, और एक उससे भी हायर होता है जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, उसको भी हम दिल ही कह देते हैं
1: जी,
2: कभी कभी हम उसको भी दिल कह देते हैं
1: जी,
2: पर वो बहुत प्योर विजडम होता है। वो प्योर विजडम की अवेयरनेस में तो कम लोग जीते हैं।
1: अच्छा,
2: क्योंकि वो होता सबसे पावरफुल इंट्यूशन है। इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं ना, हम कई बार कहते हैं कि मेरा, उसमें भी अक्षर यही आ जाता है कि मेरा दिल ये कर रहा है, बहुत, इट्स वन थॉट, इट्स अ वेरी पावरफुल वन थॉट, और अगर आप वो करते हैं उसमें सफलता ही होती है। वो लॉजिक को डिफाई करता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि ये राइट है। बट इंट्यूशन काम तब करती है जब आपका माइंड बिल्कुल क्लटर्ड नहीं है। और बहुत करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लटर होता है, बहुत ओवरथिंकिंग होती है, बहुत व्यर्थ होता है, तो इंट्यूशन ज़्यादातर आजकल काम कर नहीं रही है, करनी चाहिए। फिर सेकंड लेवल आ जाता है कि हम कहते हैं दिल की सुने या दिमाग की सुने। ये वाला जो दिल है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो गलतियाँ करा देता है। उसमें दिमाग की सुनना बेटर होता है, जो रैशनल है, मोर एनालिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्यों मूव ऑन करना चाहते हैं, उनको लगता है ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या वो रिलेशनशिप में कोई तो कारण है ना। अगर वो कारण आपको समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, लॉट ऑफ पीपल को पता होता है कि अभी मूव ऑन कर लेना चाहिए। उनका इंटेलेक्ट वाइज डिसीजन दे रहा होता है, लेकिन वो जो मन, जो बिल्कुल वीक फैक्टर होता है उस समय, मन नहीं मानता, मन नहीं कर रहा था, या मन कर रहा था खा लिया, या मन, वो बहुत डैमेज क्रिएट कर देता है। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपकी इंटेलेक्ट समझ रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अटैचमेंट और प्यार में फर्क होता है। अटैचमेंट डिपेंडेंसी होती है, आपको उनसे कुछ मिल रहा था। प्यार होता है जब हम उनको कुछ दे रहे थे।
1: क्या बात!
2: लव इज फ्लोइंग फ्रॉम माई डायरेक्शन टू देम, हमारे से कुछ उनको मिल रहा था। अटैचमेंट डिपेंडेंसी है, हमें उनसे कुछ मिल रहा था। क्या मिल रहा था? वो खुद से क्रिएट करना शुरू करें। कोई भी रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो हमें वीक बनाती है। तो उस डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करें, अपने को एम्पावर करके इंडिपेंडेंट बने। हर चीज में इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है। फिजिकली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सोशली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
1: अरे वाह, क्या बात!
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Listener mein back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: હોત તો આ પરિસ્થિતિ ઉભી ના થાત. હવે વિચારો, ઘણીવાર આપણે પણ વધારે વિચારોમાં ભેરવાઈને ખોટા પગલા લેતા આવીએ છીએ અને વગર જોઈતી તકલીફોમાં પોતાને નાખતા આવીએ છે, જેવી રીતે નંદકિશોરે પોતાનું માથું શિંગડામાં ભેરવ્યું હતું. વાત ખાલી એટલી જ છે કે વિચારો ઓછા અને સારા રાખવા. જો બહુ જ વિચારો કરશો તો આવી જ તકલીફ થશે, સાચી વાત ને? ગુડ મોર્નિંગ, યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, હું છું કૃતાર્થ. ઇટ્સ હોટ. જો તમે આ મોર્નિંગ મંત્ર મિસ કરી દીધો હોય તો તમે આને સાંભળી શકશો ઓન માય ઇન્સ્ટાગ્રામ, દેટ ઇઝ આર જે કૃતાર્થ. કૃતાર્થની સ્પેલિંગ છે KRUTARTH.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
6: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
4: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
8: Food?
9: Yes.
8: Shopping?
9: Yes.
8: Entertainment?
9: Double yes.
8: Aur health fair?
9: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
10: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, इजलिन.

0: का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रेडियो मिर्ची के
1: साथ 92.7 FM. रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
8: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
7: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
8: ऑलरेडी अ होम ओनर? ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
12: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
11: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
12: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
13: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
14: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी, गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो मैं
1: हाँ
0: सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए, इसका नाम क्या है? संतोष।
0: संतोष संतोष संतोष। क्या चल रहा है
1: आप
0: अभी?
1: क्या
0: आपको
1: करते
0: डिस्टर्ब
1: हैं?
0: तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं, कोई बात नहीं, आप
0: तो अभी ना
1: बताइए।
0: मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू डू?
0: आई एम एंथ्रोपोर नहीं, आई एम एंथ्रोनोपोनर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एम्प्रोटोन एंथ्रोपोनर एंथ। दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंस रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
12: देसी खाना,
11: देसी शॉपिंग,
12: देसी कल्चर
11: और देसी एंटरटेनमेंट,
12: बस एक ही डेस्टिनेशन,
11: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल।
13: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
8: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacabana. La bala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो, ये कमलेश जी?
2: हाँ जी, कौन?
3: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
2: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
3: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उस पर पुताई होनी है।
2: अरे, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए।
3: देखिए, मैंने हमेशा कब लिया आपसे? नहीं, हमने कब लिए आपसे?
2: अरे, तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
3: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत जो आप देने को मना कर रहे हो।
2: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
3: आप नहीं दे रहे फिर?
2: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
3: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
4: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time to 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
2: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
4: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
2: No, not an issue. 750 only?
4: Yes, sir, absolutely.
3: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
5: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
6: Yep, baka.
7: Ek divas mate una thai shake ke hu ane tame khali chill kariye, chill. Relax kariye. Shanti thi. આરામ ખુરશીના ઉપર બેસીએ, કોઈ વસ્તુની ચિંતા ના કરીએ. રોજ હું તમને લગભગ આ સમયના આસપાસ ન્યૂઝ સંભળાવતો હોઉં છું. ન્યૂઝ કેટલી બધી અગત્યની હોય છે પોતાના જીવનમાં, કે આખા વીકેન્ડ લોકો મને મેસેજ પર મેસેજ કરતા હોય છે કે જો 5 મિનિટ મોડું થઈ ગયું ને તો ગાડીમાંથી મેસેજ આવે કે ભાઈ હું ઓફિસ જઉં છું, આજે ન્યૂઝ ના આવી, આજે મને ખબર ના પડી દુનિયામાં શું ચાલે છે. પણ એક દિવસ એવો ના હોઈ શકે કે હું અને તમે ન્યૂઝપેપરને હેઠા મૂકી દઈએ. કારણ કે ન્યૂઝ પેપર્સમાં આજકાલ ન્યૂઝ ઓછી અને ચિંતાજનક ખબરો વધારે આવે છે. ટીવી ચેનલ્સમાં તો ઓહો, મારે બોલવું જ નથી કે કયા પ્રકારના એન્કર્સ આવે છે, તમને ખબર છે. યુ ઓલરેડી નો ઇટ. હું કોની વાત કરું છું? એક દિવસ માટે હેઠા રહીએ. નથી જાણવું આજે કે દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે, કઈ ચિંતાઓ ચાલી રહી છે, વર્લ્ડના લીડર શું કરી રહ્યા છે, કઈ જગ્યાએ કયા રમખાણ ચાલે છે. નથી જાણવું આજે, ખાલી અને ખાલી પોતાને જાણીએ, પોતાના પરિવારને જાણીએ. Happy Saturday to you. You are listening to Mirchi. I'm Kritarth. It's hot.
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
11: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
11: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
13: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
13: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
14: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
0: ओ नो,
13: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: फिर जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
11: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: गाना इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
4: मिर्ची पर अब बारी है असली पॉप काउंटडाउन की. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ki ginti hum aapke liye karte hain. Uske saath saath hamara 90s 2000s ka indie pop classic, some special shout outs and aaj kaafi sare interesting stories hain. So stay connected with us. At RJ Kanika on Instagram par koi gaana suggest karna hai, baatein bataniye, bindaas aake hit me up. Shuruaat karti hu is hafte ki countdown ki with Gaana number 10. Is countdown ki shuruaat hi aaj ek nayi entry ke saath ho rahi hai. Gaana number 10 par डेब्यू करता है बंजारे का गाना बरसात. इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आज से एक साल पहले हम बंजारे द आर्टिस्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते थे और आज उनके दो गाने हैं इस काउंटडाउन पे. एक ने डेब्यू किया नंबर 10 और एक है ऑन द टॉप. इस सुपर इनक्रेडिबल हरियाणवी डुओ इज वन टू लुक फॉर. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बरसात इज डेब्यूइंग दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद संजू राठौर का बैंग गर्ल्स पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके ऑन गाना नंबर 2. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
5: Number 10.

Kanika, this show is all about the hottest pop music of the week. At RJ Kanika on Instagram par jao, mere saath connect karo, koi gana share karna ho, bindaas aake hit me up. Kaun sa gana kisko achha lagta hai, koi ek gaane se kitna deep level pe connect karta hai, that's very subjective. I truly believe that hame koi gana hamare khud ke experiences ki wajah se achha lagta hai. Hamara emotional response to it, jo bahut baar hum jis situations mein hote hain, jis environment mein hote hain, jis daur mein hote hain apni zindagi ke, usse connected hota hai. But aise gaane hote hain जो टाइमलेस होते हैं, उन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए हम अपना 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए प्ले करने वाले हैं. बट वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड थ्रू द वीक्स इज जब भी हम कोई गाना प्ले करते हैं, उसकी इंट्रो म्यूजिक पर ही लोग उस गाने को पहचान जाते हैं. दैट मेक्स अस रियलाइज द पावर ऑफ अ गुड इंट्रो म्यूजिक, जैसे दिस वन बाय लकी अली. आई नो आप साथ में गुनगुनाने लग गए थे. ये मेलेडी, ये इंट्रो म्यूजिक हमारी मेमोरीज में एच्ड है, जस्ट लाइक मोहित चौहान का डूबा डूबा. ये म्यूजिक आपको पहाड़ों पे ट्रांसपोर्ट कर देता है. मोहित चौहान का गाना डूबा डूबा पूरा याद आ जाता है. सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रो पीसेस. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपके लिए इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, आपको बताना है कौन से वाला गाना है. इट्स अ हाई बीट वन. एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर मुझे आके बताओ ये कौन सा गाना है. शो में आगे बढ़ते हुए वी विल प्ले वन ऑफ दीज सॉन्ग्स ऑन आवर कैसेट क्लासिक्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मूविंग ऑन विद द काउंटडाउन, अगले वाला गाना ज़ारा खान स्केल्स का मूव बॉडी. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sabka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika, ye Anshika aapka ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं नहीं कोई बात नहीं.
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए. मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
2: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
3: दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च. गॉड ब्लेस यू. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस हंस क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
4: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
7: गाना इंडी टॉप टेन कनिका के साथ ऑन मिर्ची
8: नंबर 7.

0: घर में प्रियांश की कॉम्पोजिशन, प्रियांश जोनीता गांधी की आवाज में दिस अटली बटरफुली ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड काफी है ना इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इवन इफ आपने अभी तक शो नहीं देखा है, दिस सॉन्ग इज फॉर एवरीवन एंड टोटली बिलोंग्स ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaane, jisme ek nayi entry hai. But it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. ये वो गाने हैं जिनसे हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई है, जिनकी वजह से ये पैरेलल लेन ऑफ म्यूजिक आज यहां तक आ गया है दैट हम 7 साल से ये शो कर रहे हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज
2: तेरी दीवानी.
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है बिजुरिया बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम. ये गाना सुन के ना बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है. मेरी तबीयत थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी इस हफ्ते, मौसम में ही कुछ चल रहा है. सो दिस वॉज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सॉन्ग जो मुझे सुनना था टू री एनर्जाइज माई सेल्फ. सोनू निगम की एल्बम मौसम से ये गाना फ्रॉम द लेट 90s. दिस सॉन्ग रिमाइंड्स अस ऑफ द वर्सेटैलिटी ऑफ सोनू निगम. एक तरफ दीवाना एल्बम में इतने पावरफुल लव बैलेड्स, दूसरी तरफ अ सॉन्ग लाइक बिजुरिया, फुल पॉप स्टार एनर्जी, एनर्जी ठुमका वो अंदाज, गाना सुनते ही पूरा माहौल बन जाता है. इट्स इनक्रेडिबल कि आज 26 साल के बाद भी जब भी सोनू निगम कोई लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, क्राउड सिर्फ बिजुरिया के लिए वेट करती रहती है. एंड ये खुद सोनू निगम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, बिकॉज ऑडियंस तो हम ही है, कनेक्शन तो फील होता है. बट आई बेट यू डिडंट नो दिस दैट 26 साल के बाद सोनू निगम ने इस गाने की जो ओरिजिनल फीचरिंग एक्टर है इशिता अरुण, उनके साथ फिर से इस गाने का वीडियो बनाया. हाउ डू यू फील अबाउट दैट वीडियो, जाके देख के मुझे बताना एट आरजे कनिका पर. अब अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कौन कह सकता है इस गाने को 26 साल हो गए, द चार्म इज स्टिल द सेम. सोनू निगम की आवाज में दिस इज बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: ये गाना सुन के मैं बिजुरिया बिजुरिया का स्टेप करने लग गई थी स्टूडियो में. आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन कर लो. दैट वाज सोनू निगम की आवाज में बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनिका पर आओ, कोई भी गाना रेकमेंड करना हो, सजेस्ट करना हो फ्रॉम द 90s 2000s, दोज इंडी पॉप सॉन्ग्स जो आज भी सुन के आपको लगता है कि यार ये वाला गाना तो आज भी फेवरेट है, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई अपना फेवरेट ना बोलूं, बट जब गाना ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा बोलने का मन कर जाता है. दैट आई थिंक दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. फरक दी आर्टिस्ट का, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे एंड दिस सॉन्ग हिट्स ऑल द फील्स ब्रो. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस इज तारे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: वाराणसी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4.

0: मिटर और की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है शीशा। 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल हमें एक ऐसे ट्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ट्रेंड तो चला जाता है पर वो गाना याद रह जाता है। इट्स टाइम टू गिव अ शाउट आउट टू ऐसा ही एक सॉन्ग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है। वैसे भी मुझे पता है आप सारा टाइम ही इंटरनेट पे स्पेंड करती हो, बिकॉज बाय नाउ यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल द इंटरनेट मीम्स एंड डूइंग ऑल द इंटरनेट ट्रेंड्स। माय फेवरेट पार्ट अबाउट दिस इज कि जब कोई गाना एक ट्रेंड से इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे शोज में डेब्यू कर जाता है, आपकी प्लेलिस्ट तक आ जाता है, और ऐसे ही एक गाने को हम आज शाउट आउट देने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गुच्ची। गाने का नाम है गुची बाय अरूप खान। एंड मे बी आप इस गाने को एक बहुत क्वर्की साइड वॉक से जानते हैं। बाय द वे, ये कोई नया गाना नहीं है, ये 2020 का है, 5 साल पुराना, बट एक इंटरनेट एडिट की वजह से हर जगह वायरल हो गया है। एक बहुत फेमस एक्टर पॉलिटिशियन एक कॉलेज इवेंट में स्टेज तक जा रहे थे एंड उनके हिसाब से वहां थोड़ी जगह नहीं थी, तो उन्होंने एक क्वर्की सा साइड वॉक मारा, टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था। एंड देन द इंटरनेट डिड इट्स मैजिक। उन्होंने उस वीडियो पे गुची का गाना चिपकाया और वो हर जगह वायरल हो गई। पूरा डांस स्टेप बन गया, लोग उसे गुची वॉक कह रहे हैं। आई नो राइट, मून वॉक सुना था, लेकिन 2026 ने हमें गुची वॉक दे दी। एंड द आर्टिस्ट अरूप खान इज हैविंग हर मोमेंट, जिन्होंने 5 साल पहले ये गाना बनाया था एंड हैड नो आइडिया कि एक इंटरनेट ट्रेंड से हमें गाना इतना पसंद आ जाएगा। सो थैंक यू जेन ज़ी, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अरूप खान का गुची इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: How can you listen to this song and not start doing that step, man? Arup Khan ki awaaz mein, that was Gucci on our special shout out this week. And agar aapko nahi pata ki main kaun se step ke bare mein baat kar rahi hu, to aap kahan hain, aapke charan kahan hain? Oh my god, internet aap tak pahunch nahi pa raha hai, aapka peace kitna protected hai. So mad respect to you, par gana bahut acha hai, so you will keep coming back to it. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. हर्ष नसी की आवाज, हर्ष नसी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है साडी सुन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 3.
1: नंबर 3.
2: हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संग जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लो.

0: Trendy Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Badi ka naam hai RJ Kanika. Ye wo show hai jahan hum hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown aapke liye lekar aate hain. Yani ki weekly pop report card. Connect with me Instagram par jao, mera handle is @RJKanika. Follow karo, koi gaana suggest karna ho, bindaas aake hit me up. Follow karna bilkul free hai. It's time for me to take you to the top 2 songs of the week. But usse pehle, a quick recap right from the top. Shuruaat hi countdown ki ek nai entry ke saath hui, Banjare ka Barsaat debuts on Gaana number 10.
2: Pyare sa milna nahi, kon mere jisa chahegi.
1: उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9, जारा खान एंड स्केल्स का मूव बॉडी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 8, अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7, जुनीता गांधी गर्वित प्रियांश का काफी है ना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6, फरक का तारे ऑन गाना नंबर 5, मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4, हर्ष नुसी का साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 3, and the top 2 songs of the week. इस हफ्ते के टॉप 2 गानों में कुछ तो रीशफल हुआ है. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके राघव कौशिक का गाना, गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज. द सॉन्ग इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. दरमिया इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 22 हफ्तों से बरकरार. पिछले 3 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन को रिटेन करके बैठा है. बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, स्टिल ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने दरमिया ऑन नंबर 2, बैरन ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: द शो स्टार्ट्स इन
4: कुछ साल पहले तक बॉलीवुड को लगता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए वो उसे पता है. फिर ऑडियंस ने एक दिन सीधा कह दिया, नहीं यार, अब तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे. और तब से कुछ बदला है. धमाल 4, कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में अपनी फेमिलियर दुनिया के साथ अब भी चल रही हैं, लेकिन साथ में यू गॉट फिल्म्स लाइक टॉक्सिक, आवारापन, हैवान, धुरंधर भी. ऐसी फिल्में, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें शायद 5-10 साल पहले कोई फिल्म मेकर पिच करने से पहले दो बार सोचता. और बात ये नहीं है कि लोगों ने कमर्शियल सिनेमा को रिजेक्ट कर दिया, बात सिर्फ इतनी है अब ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझकर एक्सेप्ट करने का जमाना गया. आज फिल्म मेकर रिस्क लेता है तो जनता उस रिस्क को नोटिस करती है, कभी गले लगाती है, कभी सीधा रिजेक्ट कर देती है. और शायद इसलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती. जैसे दिल चाहता है ने एक वक्त पर हिंदी सिनेमा का एक नया पन्ना खोला था, शायद धुरंधर भी एक पेज टर्नर है. और आज का पहला पन्ना खुलता है नंबर 20 पर. जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स फ्रॉम धू रन धर.
5: नंबर 20.

0: यार सीक्वल बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धुरंधर गॉट इट राइट एंड समहाउ इवन धमाल 4 गॉट इट राइट। उसका गाना चटनी इज ऑन नंबर 19 दिस वीक, लेकिन चटनी के ठीक ऊपर है इस हफ्ते का गाना नंबर 18, विच इज हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू का गाना इश्क कमीना, ओरिजिनली पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय। सो आई डोंट नो कि इस गाने की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट कितना इन दोनों को जाता है, मोर देन दिस फिल्म बेबी डू डाई डू। लेकिन नंबर 17 पर जो आ रहा है उसमें एक अलग ही वॉर्म्थ है, शान, बस शान की आवाज।
1: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ।
0: कुछ आवाजें गाना नहीं गाती, सीधा स्क्रीन पर एक्टर को खड़ा कर देती हैं।
1: सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।
0: सैफ अली खान
1: पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए।
0: सैफ अली खान

0: उड़ता हूँ।
1: फिर से सैफ अली खान, म्यूजिक हटा दीजिए, अरेंजमेंट को भी हटा दीजिए, सिर्फ शान की आवाज, फिर भी सामने वही सैफ अली खान। दिल चाहता है हम तुम सलाम नमस्ते तारा रम पम। शान और सैफ, एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड को थोड़ा हल्का, थोड़ा मासूम, थोड़ा खूबसूरत बना देती थी, और अब लगभग 20 साल बाद दोनों फिर साथ आए हैं। बस इस बार सैफ हीरो नहीं, पापा हैं, और शान की आवाज भी कुछ वैसी ही है, सिर्फ कहानी बड़ी हो गई है। नंबर 17 पर डेब्यू इन दिस वीक ऑन द मिर्ची टॉप 20, ये है मेरे हीरो है वो, हैवान से प्रीतम दा का म्यूजिक। नंबर 17 लेके

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: जयदीप
1: हाँ जी
2: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था
1: हाँ जी
2: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो
1: मतलब
2: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं
1: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
2: तो, तो, नहीं तो, है मैं यही कह रहा हूँ तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं
1: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको काम क्यों नहीं करेंगे
2: क्या यूज करूं आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा
1: भाई साहब आप सही से यूज करिए बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको
2: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है
1: अरे आप बढ़िया क्वालिटी के दिए 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं
2: की काम तो हो नहीं रहा ना काम नहीं हो रहा
1: आप सही से काम करके देखिए ना काम नहीं करेगा
2: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ कोई आना जाए बस ये तो है अभी बड़ा रिस्की ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ ये टॉर्च चला ली ठीक है ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा
1: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा
2: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा पहले ही पकड़ा जाऊंगा चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ पांच खोल के देख ली मैंने पूरे बैंक में पांच लॉकर है एक नहीं खुल रहा कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो आप जो कहोगे हो जाएगा काम कर लिए काम जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आधे घंटे से खुली नहीं रही
1: तो कहाँ पे है तू
2: बैंक में
1: अबे तू पागल है क्या बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे
2: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने
1: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार ये
2: खोलूंगा ना खुले नहीं रहा क्या करूँ आप
1: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर तू फोन रख भाई तू मेरे पास कॉल मत करियो
2: ठीक है मैं वापस कर रहा हूँ ठीक है मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन

0: 93.3 FM HD2।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Only on Mirchi. It's hot. Number 16.

0: कहर का अपना मैडनेस है, धमाल फोर का अपना यूनिवर्स है, और बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके नाम के साथ फ्रेंचाइज लिख दो तो जनता टिकट खरीद ही लेती है। अजय देवगन के पास सिंघम, गोलमाल, दृश्यम है, अक्षय के पास हाउसफुल, हेरा फेरी है, लेकिन इमरान हाशमी, खैर वो बंदा तो खुद में एक जॉनर है, आवारापन, राज, मर्डर एंड देन यू गॉट जन्नत। जन्नत का मैजिक थोड़ा अजीब है, ना सुपर हीरो, ना स्पेक्टिकल, ना फैमिली सागा, बस एक इम्परफेक्ट आदमी, एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी और ऐसे गाने जो फिल्म खत्म होने के बाद भी जिंदगी में चलते रहे। अब आवारापन की कामयाबी के बाद जन्नत 3 की बातें हो रही हैं, लेकिन जन्नत 3 का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई नया गाना एक पूरी जनरेशन को वही फीलिंग दे सकता है, क्योंकि जन्नत की कहानी याद रह गई लेकिन जरा सा ने उस कहानी को जिंदा रखा। विशेष फिल्म्स हैव टेकन द रिस्क ऑफ मेकिंग जन्नत 3। आई वांट टू से गुड लक, क्योंकि एक नया जरा सा बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस आदमी के एक और गाने पर हम लौट रहे हैं, क्योंकि हम तो इस गाने पे फिदा हैं, नंबर 14 पे, तो फिर आओ फ्रॉम आवारापन 2।
1: नंबर 14,
2: तो फिर

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 13.

आरी आरी सालों से एग्जिस्ट करता था, लेकिन धुरंधर ने उसके अंदर एक नया मीनिंग भर दिया। अब जब भी ये बीट बजती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, रणवीर सिंह की, बदले की आग में पूरी तरह गोइंग बिजर्क। नंबर 13 पर इट्स आरी आरी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज। और शायद सिनेमा में गाने की असली पावर यही है यार, कभी फिल्म किसी गाने को अपना बना लेती है और कभी कोई गाना फिल्म से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बना लेता है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बनाया एक ट्रैक द राग ऑफ रिवेंज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये फिल्म के लिए बना ही नहीं था, कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म डीसी नाम की भेजी जा रही थी और उसके लिए ये ट्रैक एक लास्ट मिनट एडिशन था, लेकिन फिर इंटरनेट ने इसे पकड़ लिया।

gym edits, anime fights, gangster montages, transformation videos, vocal challenges. 48 ghante mein ye gana ho gaya totally viral. और सबसे क्रेजी बात पता क्या है, इस गाने को किसी फिल्म की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी कभी एक थीम सिर्फ फिल्म का साउंड ट्रैक नहीं होती, वो फिल्म का एटीट्यूड बन जाती है। लेकिन अब इसी एटीट्यूड से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर की तरफ जाने वाला हूं मैं, बिकॉज नंबर 12 पर है द मेडिटेरेनियन फील ऑफ माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। नंबर 12।

0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: शरारत को सुनते ही एक बात याद आती है कि धुरंधर के बाद रणवीर सिंह गायब हो गए। वही रणवीर जो कभी कैमरा से बचकर नहीं चलता था, इंटरव्यूज, इवेंट्स, साउंड बाइट्स, हर जगह रणवीर होता था। और फिर अपने 16 साल के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी के बाद सबसे खामोश रणवीर सिंह। लेकिन 8 महीने बाद रणवीर फाइनली बोल रहा है।
1: Dhurandhar was not an easy film to mount. It was not an easy film to execute. There were several challenges. डंके की चोट पे जाके बैक करना कन्विक्शन के साथ कि अगर ये सही पड़ गया then we will be breaking new ground.
2: I have to say I was given all the love, all the support and all the encouragement even at a time when my movies were not doing well.
1: Career है, ups and downs होते रहते हैं, but to have received that kind of support meant a lot to me. It's nothing short of a blessing.
0: शायद धुरंधर सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये उस वक्त आई जब रणवीर को एक बार फिर याद दिलाना था कि वो क्या कर सकता है। वही लड़का जो बैंड बाजा बारात से आया था, लुटेरा में टूट गया था, बाजीराव बना, गली बॉय में फिर जन्म लिया। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत एक तरह देखा जाए तो वो होती है रामलीला के साथ, क्योंकि उसमें कुछ बदल गया। संजय लीला भंसाली ने उस रणवीर को परखा जो सिर्फ स्टार नहीं एक्टर बनने की भूख रखता था, और आज मेरा पिक ऑफ द वीक उसी रणवीर का एक और रंग है। अरिजीत की आवाज में वो इश्क शोर नहीं करता, लाल इश्क।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab mirchi kha.
10: Radio Mirchi, it's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
11: Number 10.

इमरान हाशमी की एक खूबसूरत बात है, उन्होंने कभी अपनी इमेज को अपनी बाउंड्री बिल्कुल नहीं बनने दिया। शायद इसलिए सिनेमा में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तब पैदा होती है जब कोई एक्टर अपनी ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। शाहरुख खान ने डर में हीरो की जगह ऑब्सेशन को चुना, अजय देवगन ने खाकी में अपनी इमेज का एक अंधेरा दिखाया और सैफ अली खान ने ओमकारा में लंगड़ा त्यागी बनकर पूरी तरह इस सो कॉल्ड इमेज की धज्जियां उड़ा दी। नंबर 9 पर है साड़ी, धमाल 4 से, एक ऐसी फ्रेंचाइज जहां हम जानते हैं कि दुनिया कैसी होने वाली है। लेकिन हैवान नाम की जो फिल्म आ रही है उसमें अक्षय कुमार को एक सीरियल किलर के स्किन में देखना, सैफ अली खान को एक ऐसे ब्लाइंड मैन के रूप में देखना जैसे सेंसेस ही उनकी ताकत हैं, और प्रियदर्शन साहब को हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला की कॉमेडी से निकलकर एक डार्क नुआर फिल्म की दुनिया में जाते देखना, ये सिर्फ जॉनर चेंजिंग नहीं है, ये इमेज के खिलाफ जाना है। और जब बड़े स्टार्स अपनी ही पहचान को चैलेंज करते हैं ना, तब फिल्म देखने की वजह सिर्फ कहानी नहीं होती, क्यूरियोसिटी बन जाती है कि ये आदमी अपने आप को कितना बदल सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं अपना रास्ता थोड़ा सा बदल रहा हूँ, क्योंकि नंबर 8 पर इंतजार कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया। नंबर 8।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. नंबर 7.

तबाही, नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर, कभी खामोश, और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव है, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी ये गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन 2,
1: नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए,
3: संतोष संतोष
2: संतोष
3: संतोष सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं कोई बात
3: नहीं। तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करता है, व्हाट डू यू डू?
3: I am entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
7: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा

ऊंचा लंबा कद या टाइटल ही काफी है, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी आए जिनकी पहली फिल्म से ही उनका कद जो है वो काफी ऊंचा हो गया था, लेकिन उसके बाद हर फिल्म उसी के नीचे खड़ी नजर आई। आदित्य धर, फ्रेश ऑफ द सक्सेस ऑफ धुरंधर, उन्होंने इससे पहले बनाई थी उरी, एक फिल्म जिसको देख के लगा कि यार ये आदमी कहां जाएगा, लेकिन फिर आया 6 साल का

इंतजार, और जब धुरंधर फाइनली आई तब समझ आ गया शराब गए नहीं थे, he was cooking. लेकिन इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभिनव कश्यप, दबंग में उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई थी, एक पूरा फ्लेवर क्रिएट किया था।

0: लेकिन उसके बाद उन्होंने बनाई बेशरम, फिल्म नहीं चली एंड उसके बाद कैमरा के पीछे अभिनव भी गायब हो गए। देन देयर इज तरुण मनसुखानी, दोस्ताना नाम की फिल्म जो 2008 में आई थी, एक अर्बन नया बॉलीवुड मिला। फिर ही मेड अ फिल्म कॉल्ड ड्राइव और वो मैजिक दोबारा नहीं बना। तो सवाल ये नहीं है कि पहली फिल्म फ्लूक थी कि नहीं, सवाल ये है कि पहली फिल्म के बाद फिल्म मेकर अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करता है। कोई भी डायरेक्टर वन हिट वंडर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है कि उसके बाद हर फिल्म का हिसाब उसी से होता है। लेकिन दोस्ताना की वो दुनिया यार एक गाने में अब भी बिल्कुल फ्रेश लगती है, जाने क्यों, क्या गाया है विशाल ददलानी ने। इट इज अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन और ये बन रहा है मेरे इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 3,
15: लेट्स गो।

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए डेढ़ दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जेनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम्ड टू नंबर वन। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर वन।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर छोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक सुरेम ओवर एंड आउट।
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: किस झुकेगा नहीं साला।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
7: 13 सप्टेम्बर रविवार
6: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फसल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue.
3: 750
1: only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: 750 ना भाई, तेरे 1500 लगेंगे। हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम गेज में बढ़ गई।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची। It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
1: Batting तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
2: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
6: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
11: दिस सितंबर 12th एंड 13th जॉइन अस एट द इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर एट श्री कृष्ण मंदिर मॉर्गनविल।
12: एंजॉय डिलीशियस इंडियन फूड, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
13: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: लिसनर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा।
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से, मैं भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए
1: जी। बताइए इसका नाम क्या है?
2: संतोष। संतोष
1: संतोष
2: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं कोई बात
2: नहीं। तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
2: डू? I am entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive

0: न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर।
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy और
9: confusion ही confusion.
5: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: Desi khana,
12: desi shopping,
11: desi culture
12: aur desi entertainment.
11: Bas ek hi destination.
12: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
13: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: चर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: कुछ साल पहले तक बॉलीवुड को लगता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए वो उसे पता है. फिर ऑडियंस ने एक दिन सीधा कह दिया, नहीं यार, अब तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे. और तब से कुछ बदला है. धमाल 4, कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में अपनी फेमिलियर दुनिया के साथ अब भी चल रही हैं, लेकिन साथ में यू गॉट फिल्म्स लाइक टॉक्सिक, आवारापन, हैवान, धुरंधर भी. ऐसी फिल्में, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें शायद 5-10 साल पहले कोई फिल्म मेकर पिच करने से पहले दो बार सोचता. और बात ये नहीं है कि लोगों ने कमर्शियल सिनेमा को रिजेक्ट कर दिया, बात सिर्फ इतनी है अब ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझकर एक्सेप्ट करने का जमाना गया. आज फिल्म मेकर रिस्क लेता है तो जनता उस रिस्क को नोटिस करती है, कभी गले लगाती है, कभी सीधा रिजेक्ट कर देती है. और शायद इसलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती. जैसे दिल चाहता है ने एक वक्त पर हिंदी सिनेमा का एक नया पन्ना खोला था, शायद धुरंधर भी एक पेज टर्नर है. और आज का पहला पन्ना खुलता है नंबर 20 पर. जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स फ्रॉम धू रन धर.
4: नंबर 20.

0: यार सीक्वल बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धुरंधर गॉट इट राइट एंड समहाउ इवन धमाल 4 गॉट इट राइट। उसका गाना चटनी इज ऑन नंबर 19 दिस वीक, लेकिन चटनी के ठीक ऊपर है इस हफ्ते का गाना नंबर 18, विच इज हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू का गाना इश्क कमीना, ओरिजिनली पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय। सो आई डोंट नो कि इस गाने की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट कितना इन दोनों को जाता है, मोर देन दिस फिल्म बेबी डू डाई डू। लेकिन नंबर 17 पर जो आ रहा है उसमें एक अलग ही वॉर्म्थ है, शान, बस शान की आवाज।
1: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ।
0: कुछ आवाजें गाना नहीं गाती, सीधा स्क्रीन पर एक्टर को खड़ा कर देती हैं।
1: सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।
0: सैफ अली खान
1: पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए।
0: सैफ अली खान।

0: फिर से सैफ अली खान। म्यूजिक हटा दीजिए, अरेंजमेंट को भी हटा दीजिए, सिर्फ शान की आवाज, फिर भी सामने वही सैफ अली खान। दिल चाहता है हम तुम सलाम नमस्ते तारा रम पम। शान और सैफ एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड को थोड़ा हल्का, थोड़ा मासूम, थोड़ा खूबसूरत बना देती थी, और अब लगभग 20 साल बाद दोनों फिर साथ आए हैं। बस इस बार सैफ हीरो नहीं, पापा हैं, और शान की आवाज भी कुछ वैसी ही है, सिर्फ कहानी बड़ी हो गई है। नंबर 17 पर डेब्यू इन दिस वीक ऑन द मिर्ची टॉप 20, ये है मेरे हीरो है वो, हैवान से प्रीतम दा का म्यूजिक।
1: नंबर 17।
2: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
3: लिख रहे हो ना,
2: तुम भी गाओ।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: जयदीप।
2: हाँ जी
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको, काम क्यों नहीं करेंगे।
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की चाहिए आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी,
2: यूज तो करो उसको, काम क्यों नहीं करेंगे।
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की चाहिए आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है।
2: अरे आप बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज कर।

0: तभी तो खुलेगा।
1: थोड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। पांच खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में पांच लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप चुकाओगे, हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
2: तू कहाँ पे है? तू
1: बैंक में।
0: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
1: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर अपना हथौड़ा ना चलने पर आप लोग सारा ने।
0: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
1: खोलूंगा ना, खुले नहीं रहा, क्या करूँ आप?
0: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, तू मेरे पास कॉल मत करियो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
11: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 16।

0: कहर का अपना मैडनेस है, धमाल फोर का अपना यूनिवर्स है, और बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके नाम के साथ फ्रेंचाइज लिख दो तो जनता टिकट खरीद ही लेती है। अजय देवगन के पास सिंघम, गोलमाल, दृश्यम है। अक्षय के पास हाउसफुल, हेरा फेरी है। लेकिन इमरान हाशमी, खैर वो बंदा तो खुद में एक जॉनर है। आवारापन, राज, मर्डर एंड देन यू गॉट जन्नत। जन्नत का मैजिक थोड़ा अजीब है ना, सुपर हीरो ना, स्पेक्टिकल ना, फैमिली सागा, बस एक इम्परफेक्ट आदमी, एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी और ऐसे गाने जो फिल्म खत्म होने के बाद भी जिंदगी में चलते रहे। अब आवारापन की कामयाबी के बाद जन्नत 3 की बातें हो रही हैं, लेकिन जन्नत 3 का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई नया गाना एक पूरी जनरेशन को वही फीलिंग दे सकता है। क्योंकि जन्नत की कहानी याद रह गई, लेकिन जरा सा ने उस कहानी को जिंदा रखा। विशेष फिल्म्स हैव टेकन द रिस्क ऑफ मेकिंग जन्नत 3। आई वांट टू से गुड लक, क्योंकि एक नया जरा सा बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस आदमी के एक और गाने पर हम लौट रहे हैं, क्योंकि हम तो इस गाने पे फिदा हैं, नंबर 14 पे। तो फिर आओ फ्रॉम आवारापन 2,
1: नंबर 14।
2: तो फिर

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
10: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
11: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.
16: Number 13.

आरी आरी सालों से एग्जिस्ट करता था, लेकिन धुरंधर ने उसके अंदर एक नया मीनिंग भर दिया। अब जब भी ये बीट बजती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, रणवीर सिंह की, बदले की आग में पूरी तरह गोइंग बिजर्क। नंबर 13 पर इट्स आरी आरी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज। और शायद सिनेमा में गाने की असली पावर यही है यार, कभी फिल्म किसी गाने को अपना बना लेती है और कभी कोई गाना फिल्म से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बना लेता है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बनाया एक ट्रैक द राग ऑफ रिवेंज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये फिल्म के लिए बना ही नहीं था, कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म डीसी नाम की भेजी जा रही थी और उसके लिए ये ट्रैक एक लास्ट मिनट एडिशन था, लेकिन फिर इंटरनेट ने इसे पकड़ लिया

gym edits, anime fights, gangster montages, transformation videos, vocal challenges. 48 ghante mein ye gana ho gaya totally viral. और सबसे क्रेजी बात पता क्या है, इस गाने को किसी फिल्म की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी कभी एक थीम सिर्फ फिल्म का साउंड ट्रैक नहीं होती, वो फिल्म का एटीट्यूड बन जाती है। लेकिन अब इसी एटीट्यूड से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर की तरफ जाने वाला हूं मैं, बिकॉज नंबर 12 पर है द मेडिटेरेनियन फील ऑफ माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। नंबर 12।

0: साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
7: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
8: अब मिर्ची खा.
10: Radio Mirchi, it's hot.
11: Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 11.

0: शरारत को सुनते ही एक बात याद आती है कि धुरंधर के बाद रणवीर सिंह गायब हो गए। वही रणवीर जो कभी कैमरा से बचकर नहीं चलता था, इंटरव्यूज, इवेंट्स, साउंड बाइट्स, हर जगह रणवीर होता था। और फिर अपने 16 साल के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी के बाद सबसे खामोश रणवीर सिंह। लेकिन 8 महीने बाद रणवीर फाइनली बोल रहा है।
1: Dhurandhar was not an easy film to mount. It was not an easy film to execute. There were several challenges. Dhamke ki chot pe jaake back karna conviction ke saath ki agar ye sahi pad gaya then we will be breaking new ground.
2: I have to say I was given all the love, all the support and all the encouragement even at a time when my movies were not doing well.
1: Career hai, ups and downs hote rehte, but to have received that kind of support meant a lot to me. It's nothing short of a blessing.
0: शायद धुरंधर सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये उस वक्त आई जब रणवीर को एक बार फिर याद दिलाना था कि वो क्या कर सकता है। वही लड़का जो बैंड बाजा बारात से आया था, लुटेरा में टूट गया था, बाजीराव बना, गली बॉय में फिर जन्म लिया। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत एक तरह देखा जाए तो वो होती है रामलीला के साथ, क्योंकि उसमें कुछ बदल गया। संजय लीला भंसाली ने उस रणवीर को परखा जो सिर्फ स्टार नहीं एक्टर बनने की भूख रखता था, और आज मेरा पिक ऑफ द वीक उसी रणवीर का एक और रंग है। अरिजीत की आवाज में वो इश्क जो शोर नहीं करता, लाल इश्क। पिक ऑफ द वीक।

बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद हो ना हो, तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: शुभ है बादशाह
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10।

इमरान हाशमी की एक खूबसूरत बात है, उन्होंने कभी अपनी इमेज को अपनी बाउंड्री बिल्कुल नहीं बनने दिया। और शायद इसलिए सिनेमा में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तब पैदा होती है जब कोई एक्टर अपनी ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। शाहरुख खान ने डर में हीरो की जगह ऑब्सेशन को चुना, अजय देवगन ने खाकी में अपनी इमेज का एक अंधेरा दिखाया और सैफ अली खान ने ओमकारा में लंगड़ा त्यागी बनकर पूरी तरह इस सो कॉल्ड इमेज की धज्जी उड़ा दी। नंबर 9 पर है साड़ी, धमाल 4 से, एक ऐसी फ्रेंचाइज जहां हम जानते हैं कि दुनिया कैसी होने वाली है। लेकिन हैवान नाम की जो फिल्म आ रही है उसमें अक्षय कुमार को एक सीरियल किलर के स्किन में देखना, सैफ अली खान को एक ऐसे ब्लाइंड मैन के रूप में देखना जैसे सेंसेस ही उनकी ताकत हैं, और प्रियदर्शन साहब को हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला की कॉमेडी से निकलकर एक डार्क नुआर फिल्म की दुनिया में जाते देखना, ये सिर्फ जॉनर चेंजिंग नहीं है, ये इमेज के खिलाफ जाना है। और जब बड़े स्टार्स अपनी ही पहचान को चैलेंज करते हैं ना, तब फिल्म देखने की वजह सिर्फ कहानी नहीं होती, क्यूरियोसिटी बन जाती है कि ये आदमी अपने आप को कितना बदल सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं अपना रास्ता थोड़ा सा बदल रहा हूं, क्योंकि नंबर 8 पर इंतजार कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया। नंबर 8।

इमरान हाशमी की एक खूबसूरत बात है, उन्होंने कभी अपनी इमेज को अपनी बाउंड्री बिल्कुल नहीं बनने दिया। और शायद इसलिए सिनेमा में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तब पैदा होती है जब कोई एक्टर अपनी ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। शाहरुख खान ने डर में हीरो की जगह ऑब्सेशन को चुना, अजय देवगन ने खाकी में अपनी इमेज का एक अंधेरा दिखाया और सैफ अली खान ने ओमकारा में लंगड़ा त्यागी बनकर पूरी तरह इस सो कॉल्ड इमेज की धज्जी उड़ा दी। नंबर 9 पर है साड़ी, धमाल 4 से, एक ऐसी फ्रेंचाइज जहां हम जानते हैं कि दुनिया कैसी होने वाली है। लेकिन हैवान नाम की जो फिल्म आ रही है उसमें अक्षय कुमार को एक सीरियल किलर के स्किन में देखना, सैफ अली खान को एक ऐसे ब्लाइंड मैन के रूप में देखना जैसे सेंसेस ही उनकी ताकत हैं, और प्रियदर्शन साहब को हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला की कॉमेडी से निकलकर एक डार्क नुआर फिल्म की दुनिया में जाते देखना, ये सिर्फ जॉनर चेंजिंग नहीं है, ये इमेज के खिलाफ जाना है। और जब बड़े स्टार्स अपनी ही पहचान को चैलेंज करते हैं ना, तब फिल्म देखने की वजह सिर्फ कहानी नहीं होती, क्यूरियोसिटी बन जाती है कि ये आदमी अपने आप को कितना बदल सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं अपना रास्ता थोड़ा सा बदल रहा हूँ, क्योंकि नंबर 8 पर इंतजार कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया। नंबर 8।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो ये कमलेश जी।
3: हाँ जी कौन?
2: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
3: देखिए
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे, हमने कब लिए आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें, बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे, कोई त्योहार नहीं है कोई फसल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
4: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: yes,
4: with us?
3: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
4: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
3: No, not an issue.
4: 750
3: only?
4: Yes, sir, absolutely.
2: 750 ना भाई, तेरे 1500 लगेंगे। हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम गिरेज में पड़ गई।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट स्टाइल।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Inefficient,
10: very complex,
9: clumsy or
10: confusion ही confusion.
9: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
12: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin।
13: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
17: Energy Top 20. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7.

तबाही, नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है, मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर, कभी खामोश, और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव हैं, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी ये गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन 2,
1: नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
8: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
13: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
12: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर

ऊंचा लंबा कद या टाइटल ही काफी है, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी आए जिनकी पहली फिल्म से ही उनका कद जो है वो काफी ऊंचा हो गया था, लेकिन उसके बाद हर फिल्म उसी के नीचे खड़ी नजर आई। आदित्य धर, फ्रेश ऑफ द सक्सेस ऑफ धुरंधर, उन्होंने इससे पहले बनाई थी उरी, एक फिल्म जिसको देख के लगा कि यार ये आदमी कहां जाएगा, लेकिन फिर आया 6 साल का इंतजार, और जब धुरंधर फाइनली आई तब समझ आ गया शराब गए नहीं थे, he was cooking। लेकिन इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभिनव कश्यप, दबंग में उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई थी, एक पूरा फ्लेवर क्रिएट किया था।

0: लेकिन उसके बाद उन्होंने बनाई बेशरम, फिल्म नहीं चली एंड उसके बाद कैमरा के पीछे अभिनव भी गायब हो गए। देन देयर इज तरुण मनसुखानी, दोस्ताना नाम की फिल्म जो 2008 में आई थी, एक अर्बन नया बॉलीवुड मिला, फिर ही मेड अ फिल्म कॉल्ड ड्राइव और वो मैजिक दोबारा नहीं बना। तो सवाल ये नहीं है कि पहली फिल्म फ्लूक थी कि नहीं, सवाल ये है कि पहली फिल्म के बाद फिल्म मेकर अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करता है। कोई भी डायरेक्टर वन हिट वंडर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है कि उसके बाद हर फिल्म का हिसाब उसी से होता है। लेकिन दोस्ताना की वो दुनिया यार एक गाने में अब भी बिल्कुल फ्रेश लगती है, जाने क्यों, क्या गाया है विशाल ददलानी ने। इट इज अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन और ये बन रहा है मेरे इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए 1.5 दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जेनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम टू नंबर 1। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर छोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आज
2: हैव अ रेडी स्टॉक एट राज जूल्स. बाय गोल्ड बार्स नाउ एट राज जूल्स.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आज आइए मिस

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क,
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: Food?
11: Yes.
10: Shopping?
11: Yes.
10: Entertainment?
11: Double yes.
10: Or health fair?
11: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
12: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers. Ladies first choice.
15: Listener MI, back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
17: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go. We-

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
1: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क,
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: Grand Finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक्री रोड, इजलिन।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन,
11: we are gonna go
10: on a ride.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.